0: जानीमानी लाइफ इंश्योरेंस खुले राजियो
1: समुदाय का लागी समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज।

0: शहीद मेमोरियल अस्पताल धारिंग सीमा हरेक महीना को पहिलो शनिवार मानसिक रोग संबंधी स्वास्थ्य परीक्षण।
1: यदि तपाई वा परिवार का कुनै सदस्यमा लागू औषध सम्बन्धी

डाक्टर को सलाह बिना कुनै औषधि नखाऊ, डाक्टर को सलाह बमोजिम को औषधि पूरा मात्रा समय में सेवन करौ र बाकी औषधि अरूलाई नदिऊ र सरसफाई में ध्यान दिऊ। औषधि को दुरूपयोग रोकऊ, माइक्रोबियल प्रतिरोध घटाऊ, स्वस्थ रहूं, सचेत बनाऊ।

0: महालक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस के अभिकर्ता बनो।
1: प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड। अहिले दिउँसोको एक बजे सुदन सिमेन्ट क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज भन्दै सिर ठाडो पारिरहेका छौं सदा सर्वदा।

0: Fuzzy Couture.
1: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.
2: रेडियो धारी समय संकेत
3: अहिले 2:03 बज्यो।

अपनी साफ सफाई गाँव आए अपने गाँव में कृषि क्रांति करना पड़े व्यावसायिक कृषि क्षति करना पड़े सबजा आत्मनिर्भर करना पड़े और सबजा शुद्ध नहीं बनने पड़े हम देश कल बनाने हम गाँव कल बनाने हमी नहीं बनाने लगा सबजा आप सब सा।

0: एक्सट्रीम इमेजिंग टाइम टेक अहिले ठीक 7 बजेको छ।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेक्स एडजस्टमेंट फील द एनर्जी।
2: रेडियो धारी समय संकेत
3: अहिले साँझको 7 बज्यो।
4: शिवम सिमेंट क्वालिटी को मामला में नो कम्प्रोमाइज भन्दै सिर ठाडो पारिरहेका छौं सदा सर्वदा।

0: कौन ढंग ने यहां आवाज उठाउन पर्यो
1: के तपाई को सुझाव विचार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में सहयोग पुर्याउँछ
2: हो सक्छ जनता को आवाज संसद सम्म पुग्छ कानून निर्माण प्रक्रिया में जोड़िन्छ
0: यो संसद में समिति में छलफल करने वातावरण को लागि हामी प्रेसर क्रिएट गर्छौं
1: सरकारबाट प्रस्तुत विधेयक में
3: अहिले बेलुकीको 8 बज्यो।

0: Sabrina Ilaes Life Insurance. Coolie Radio. शहीद मेमोरियल अस्पताल धारिंगसी में हरेक महीना को पहिलो शनिवार मानसिक रोग संबंधी स्वास्थ्य परीक्षण।
1: यदि तपाई वा परिवार का कुनै सदस्य में लागू औषध संबंधी दुर्व्यसनी छारे रोग निराश हुने काम में मन नलाग्ने आलस्य हुने निन्द्रा नलाग्ने बिर्सने शरीर झमझम हुने धेरै डर लाग्ने मुटु ढुकढुक हुने धेरै शंका गर्ने अस्वाभाविक व्यवहार देखाउने आत्मबल कमजोर हुने बच्चाहरूमा सुस्त मनस्थिति आउने समस्याहरू छन् भने हरेक महिनाको पहिलो शनिबार शहीद मेमोरियल अस्पताल धादिङमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस्।
0: स्वास्थ्य परीक्षण पारण स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान का वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर नवीन लेखक स्वास्थ्य परीक्षण
1: शहीद मेमोरियल अस्पताल धादिंगी में हरेक महीना को पहले शनिवार मानसिक रोग वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर नवीन लेखक स्वास्थ्य परीक्षण कर
0: थप जानकारी को लगी 010-520-238
1: स्वस्थ समाज निर्माण को लागि शहीद मेमोरियल अस्पताल प्रणाली धादिङदेशी द्वारा जनहित में जारी संदेश।
2: सरकारी शुल्क में निजी अस्पताल में उपचार काठमाडौं को वसुन्धरा स्थित 100 बेड को मल्टी स्पेशलिटी केडीसी जनरल अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक र आधुनिक प्रविधि सहज र गुणस्तरीय उपचार अब सरकारी मूल्यमै पाउनुहोस्। 24 घंटा आकस्मिक सेवा ओपीडी सेवा शल्यक्रिया सेवा साथै ल्याब एक्सरे अल्ट्रासाउंड इको इंडोस्कोपी लगायत आधुनिक रेडियोलॉजी सेवाहरुको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। केडीसी जनरल अस्पताल संपर्क नंबर 01-4985-910 01-4985-911 तपाईको स्वास्थ्य हाम्रो प्राथमिकता।